त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौ तिनकै बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे। फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल। सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, काम काम ना आवे खोटी अवगणियार। ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार, आवण।

त्रिभवन सो प्रभ जानिय साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाई है सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ।

राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सो

देख निरंजन पाए। गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हो मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवऊ, बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे, टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुर नाव ना पाये, बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाई है जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाई है निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा।

होए, बिन गुर प्रेम न पाइए, शब्द मिले रंग होए रहाओ, गुर सेवा सुख पाइए, हर वर सह सिंगार, सच माने फिर सेजड़ी, गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए, गुर मेली गुणचार, सच मिलो वर कामणी, फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया, कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी, निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए, साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

नातिस चिल न तमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले पाई है रतन विचार। मन दीजे गुर अपने।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरखरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पुआईए पय किरत कमाए।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कणो, मन तन सांस शरीर, बिन जल तड़ी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी चात्रिक मेह, सर पर थल हरियावले, एक बूंद ना पवी के हे। कर्म मिले सो पाई है, किस पया सिर दे हे। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी जल दुध होए, आवतन आपे खवे, दुध को खपन न दे, आपे मेल विछुनिया सच वजे आई दे। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, चिन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर, मनमुख सो जी ना पवे, गुरमुख सदा हजूर। मनमुख गणत गणावनी करता करे सोए, ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए ता पाई है, सच मिले सुख होए। सच्चा नेहो ना तुतई, जे सतगुर ते तै सोए, ज्ञान पदार्थ पाई।

देख आखन आते के तेरे गुरबिन बूझ न होए, नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए, जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए। गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास, अष्ट तात पाप साकी करिए शब्द विदास।

आशा अंदर जमिया आशा रस खाए आशा बंद चलाइए मोहे मोहे चोटा खाए अवगुण बद्दा मारिए छूटे गुरमत नाए सर्वे खाई एक तू जो पावे त्यों राख गुरमत साचा मन वसे नाम पलो पत साख हों मैं रोग दवाई है।

सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सार, ज्यों पावे त्यों राख तू मैं हर नाम आधार। मन रे साची खसम रे जाए, जिन कन मन साज सिधारिया किस से की निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए, कंचन के कोट गत करी।

तो ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोई, इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए, कर्म मिले सच पाइए थोर बख्स ना मिटे कोई, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए, अकथ कथा विचारिए जो सतगुर माहि समाए।

नाले हर सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले एनस हर रस भोग चुप चले वित जावनो साकत डोल डोलाए बाहर ढूंढ भी गुच्छी है कर्म है।

अगन मरे जल पाई है, जो बारिक दूध माए। बिन जल कमल सो ना की है, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस मिले, जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला, डूंगर देख डरावनो, पेई अड़े डरियास। ऊंचो पर्वत गाखड़ो, ना पौड़ी तित पास। गुरमुख अंतर जानिया, गुर मेली तरियास। पाई रे पाव जल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले। गुर तारे हर नाओ, रहाओ चला चला जे करी, जाना चलन हार। जो आया सो चलसी, अमर सो गुर करतार। ही सच्चा सालाहना, सच्चे थान प्यार। दर कर महला सोहने, पक्के कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे, लश्कर लख अपार। किसी नाल न चलिया, खप खप।

नारी सेज पतार, चोआ चंदन लाइए, कापड़ रूप सिगार, केहू खेर लाइए, छोड़ चले कारबार, नहर मलूक कहा।

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर साहा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथा हो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बै

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरुमुख आपे दे वडियाए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल ना जाए, सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जीवन दाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे छोर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई। तेयरे जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंगिन पगत करें दिन राती हों में मोह चुकाया, जिस क्यों राता कैसो हो गए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों में तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचल सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभु आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए, जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत नामे ते आ जाए, हर का पाना भगति मनिया से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जे सो अमृत नीरी है पी दिक फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पान

हर का नाम निधान है जिस अंत ना पारावार गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है दूजा और न कोए गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी दीर्घ सुहावड़ा सच चुगे गुरु।

ना अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुमाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए।

हुक्म ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार मन हज कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहणे गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवा।

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निंचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए, पाठ पड़े ना बूझे तेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए। बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखन हो गई खाए। सबदे नाम ते आये सबदे सच समाए, माया पूले सिद फिरे समाग ना लगे सुवाए। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाये ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एवो जियो बद है हों में कर्म कमाए। बिन शब्द परम न चूके न विचो हों में जाए, बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द थाए न पाए। शब्दे हों में मारिए माया का परम जाए, नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुवाए। बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए, भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर्षा लाहिए करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए,

न मिलते पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ अंदर नाम बखाने। एको पड़े एको नाम बूझे दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागे आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़वा

जा सतगुर मेल मिलाए। सत संगत में नाम हर उपजे, जा सतगुर मिले सुभाए। मन तन अर्थी आप गवाई, चलना सतगुर भाए। सत बलिहारी गुर अपने विटो, जे हर सेती चित लाए। सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, हर सेती रंग राता। प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर, गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम में

सार कमाए, सेवड़ पाजी जिन्नी पाया सहजे रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मनमुख कर्म कमाए।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ जोत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाही।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवियो सेखित आए संसार, जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सच दिलाया सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सबदे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर न कोई, जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। किना निज कर वासा

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस्तिया किरपन लोभ प्या

जोगिया तीर्थ गमन करे खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलक सिकदारिया रस पोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अपार रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाया साधन संग परीत लश्कर तरकस बंद

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा।

नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुझ खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाहे जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिरे निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिन से नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर।

दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतार रह समानिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नगर करे निस्तार जियो सतगुरु मिलिया जानिए जित मिले नाम वखाणिए सतगुरु बाज न पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हों सतगुरु विटों कुमाया जिन परम पुला मार्ग पाया नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत करी सरकार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की तैग रखिया दोए कर मस्तक तार जियो सब संजम रहे स्यान पा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरज समारिया कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छेड़ा फल पाया सा पाप सा सिर खसम तू जप नानक जी वै नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सच्चो सच वर्तदा जिस पावे किसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो गोपी ने गो

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا سب

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा ना मर जाद आया।

मित्रा पर जोबन में मत एन सकाम व्यापयावन जा रहा मित्रा अंगले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही और जाने रस कस मीठे ज्ञान त्यान गुण संजम नाही जन्म मरोगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन अखी अंध जीव रस नाही रहे प्राको ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खर पक्की पुर पजे बिनसे आए चले क्या मान।

चोट न खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पक्षे ती जावे सह समावे।

हर जतिए कृपा तार। दूजे पहरे रहन कहवन जा रहा मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा। ले मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, जिते नो लपटाए। कोई गुरमुख होवे सो करे विचार, हर त्यावे मन

तन चित वै तन संच वै वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल है जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल।

वो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर से ती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी पेद न

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जंग

गुरमुख हर हर सदा ते आए, सैया विच फिरे सुहेली, हर दरगे बहां लुड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम।

मुख नाम ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी हर राम।

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

आठ पहर प्रवजापे। आप जुगादि सेवक स्वामी पगता नाम आधारे, नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारे आज

रूप मिटाया। चित्रगुप्त का कागज फाड़िया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लगे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत प्रगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। हर पी अघाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, इच पुनी सतगुर तुठे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्व सुखा कर दीना, नानक सिख संत समझाए, हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के छंत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दखना हाथ में।

मिले हो, आपे ही आप मोहे हो, जस नानक आप सुनियो हो, संत प्रेम खगौरी पायरी जाए, गोविंद मन मोहया जियो, संतन के प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो, हर कंठ लग सोया, दोख सब जोया, भगत लखन कर वस भए, मन सर्व सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए, सखी मंगलो गाया, इच्छ पुजाया, बहुर न माया होया, कर गैली ने नानक प्रभ प्यारे, संसार सागर नहीं पोया, दखना साईं नाम अमोल।

जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकस स्वामी, सदके जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुर शरणाई पाई है मन जा रहा मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम ते आए। चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सबजी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरणाई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट रमैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूरब लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रह रास रहाओ।

सतगुरु सत दृढ़ाया सत रहो निवलाए, नानक सब दी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी। हर अंदर बाहर इक तू तू जाने पेत, जो की कह सो हर जानदा मेरे मन हर चेत। सो डरे जे पाप कमावदा तरमी विगसेत, तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत, जिना नानक सच पछाणे।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवरना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

दूजे पाए दुख पाया सब जोही जमकार। नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल। महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनो कुसुदा कालिया बार चिटविया रीसा करें तिनाड़िया जो सेवे दर खड़िया नाल खसमें रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया। नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल। तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल। तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल। तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल। हर तुदो बार किच नहीं गुर सबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे। जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई। नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल। इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल। दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार बिस्ता।

पौड़ी। शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक संभाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया, इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए, दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे, जम का पाथा गलो न कटी है, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए, पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसै मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए, नान सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिस्ता सिफत करे अरदास। सच्चे सबद सलाहना, सुखे सुख निवास, जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाईए, मन मुख मोह विनाश, ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सबना रास, सब तू दे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास, तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगी।

आप पछाने सावत राखे इकत करियाने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सत समावे सोए। महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुर जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुर जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हो आ कृपाल हर से सतगुर कैरी पाही तिन ऐथे ओथे मुख उजले हर दरगह पैदे जाही। श्लोक महला दूजा जो सिर साई नानवे सो सिर दी जयदार नानक जिस पिंजर

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिर के पाणे ना चले हुक्म करेगा वार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मन मुख अज्ञानी मा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियोए। जय

सब रती सुहागनी सतगुर कै पाए प्यार सदा रावे फिर अपना सच्चे प्रेम प्यार अस सुवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार पौड़ी हर तेरी सब करें उस्तक जिन फाफे काढ़िया हर तुदनो करें सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया हर निमाणिया तू मान हर डाडी हूं तू डाडिया हर अंकारिया मार निवाए मन मुख मूड साध्या हर भगता दे वड्याई गरीब अनाथिया श्लोक महला तीजा सतगुर कै पाणे जो चले तिस वड्याई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारण हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार मन मुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौजल संसार सब औगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कै हे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे नानक सहज समायन। हर अपनी कृपा करे पौड़ी हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन। अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन। पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चाले।

आए रहाओ। अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पया। माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंख चालना प्राणी रव सप तहना परवेसं। माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है पेखियले तर्म राओ। तह कर दल करन महाबली तिन आग लड़े में रहन ना जाए। जे को मुंह उपदेश करत है ता वन त्रिन रतड़ा नारायण। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया अब किछ कह न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखली लाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजे जाकी दिस्त नाद लिव लागे रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की। पहरियां कह कर गां।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन श्रमय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुम लाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे साका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेणी कह सुनो रे भक्तो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जा

हर हर नाम में हर मन भाया, वडभागी हर नाम ते आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बालक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल मेल आई है मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिखिया सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर

तिसके हौवारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हौ सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन नार लई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी इक नदरी आया हौ सतगुर विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चा त्रिकी न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन बीत मुरारे जियो हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन बीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ताड़ी।

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंक।

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा। दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुरु मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी। गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो। अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया। नाम रंग नाम चोज तमाशे, नाउ नानक कीने भोगा जियो। माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो। करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई लखवरिया।

तू प्रीतम ठाकुर अथ पारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कह सदा जपो दयाला जियो प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन पारो तुमरी कृपा ते हुए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पए निहाला जियो माज महला पंजवा हुक्मी वर्षण लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांत सहज सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो सब किछ बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो सच्चा साहिब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस सदा त्याई जन्म मरण पै काटे मोहा जिसे सोग संतापे जियो सास सास नानक साला है सिमरत नाम काटे सब पाहे पूरन आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावे गुण अगम अपारे गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याये जिन हम किए जियो जन्म जन्म के किल विख जावे मन चिंदे से ही फल पावे सिमर साहिब सो सच स्वामी रिजक सबस को दिए जियो नाम जपत सर्व सुख पाये सब पौ बिन से हर हर त्याये जिन से व्यासो पार ग्रामी कारज सगले थिए जियो आए पया तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों लह मिलाई कर कृपा प्रपक्ति लावो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवा पय कृपाल गोविंद गोसाई मेघ वर्षे सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठाड पाई करतारे जियो अपने जी जंत प्रतपारे ज्यो बार माता सम्मारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाये कुर्बाना रैन दिन सत्य सदा ते आये जे खिन में सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवा जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अक्षर सोइन चुबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसुकी वाड़ी जियो संता से ती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दुलब देख कोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला कर कृपा नानक गुण गावे राखो शर्म असाड़ी जियो माज महला पंजवा चरण ठाकुर के हृदय समाने कल कलेश सब दूर पयाने सांत सुख सहज तुन उपजी साधु संग निवासा जियो लागी प्रीत ना टूटे मूले हर अंतर बार गया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जियो अमृत वर्ष है अनहद बाणी मन तन अंतर सांत समाणी त्रिपक अघाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिस्ते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड पागी नानक पूरन आसा जियो माज महला पंजवा मियो पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया दया कलेस पया

सर्व जिया को देवनहारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

जल फल मैयल दैदिस वरसाया, साख पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जा की शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये, तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा, नानक दास कह बेनंती, आप पहर तू त्याई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रव तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाध लगी लिव अंकर, सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा, सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने, सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथ की दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे, नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते है, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा खान न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे, अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो, सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सच वडाई कीम ना पाई, कुदरत कर्म ना कहना जाई, त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। सच सालाहन बड़ पादमी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है, रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई, नानक सच त्याई है।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाके, अंतर बाहर हर प्रभु साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे साधर वाला, देह दान ना।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं तार ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया तिन

तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जीओ। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक एह मत सारी जीओ। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर

कटिया जम की फांसा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। खिन में थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंड कवल जिस होए परगास।

जिन देखे सब उतरे तलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, बिन स्या परम को तीथा जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांछे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक को प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सब सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, दिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना

सेवा सुरत शब्द चित लाए, होमे मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया, गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साई सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अंदिन सदा रहे रंग राता, दर्श कैसो जी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हों मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हों मैं मार मन वसाया, गुर चरणी सदा चित लाया, गुर कृपा ते मन तन निर्मल, निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तू दैताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई, नानक नाम त्याय सदा तू जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा, बिन तकड़ी तोले संसारा, गुरमुख हो वे तोई बूझे, गुण कह गुणी समावणिया। हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया, जो सच लागे से अंदन जागे, दर्श कै शोभा पावणिया। रहाओ आप सुने ते आपे वेखे, जिसनो नजर करे सोई जन लेखे, आपे लाए ले सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए, पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बड पागे, पूरे कर्म मिलावणिया। पेयड़े तन अंगन सुती, कंत विसारी अवगण मुती, अंगिन सदा फिरे बिल लादी, बिन फिर नींद न पावणिया। पेयड़े सुखदाता जाता, हों मैं मार गुर शब्द पछाता, सेज सुहावी सदा फिर रावे, सत सिगार बनावणिया। लख चौरासी जी उपाय, जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए, किल बिख का सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वडियाई, आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया, एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया, गुरमती मन इकत कर आया, सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला ते आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म बिदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वडियाई, हर के नाम समावणिया। माया मोह हर चेते नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किछ नजर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच वखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे,
काल ना चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल ज्योत समाणी सुन मन सच समावने हौ वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए।

सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मिलावणिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिसते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावणिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावणिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावणिया होवारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावणिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सब दे मार जीवावणिया हर तुद बाजो मैं कोई नाही हर तुद ऐ सेवी तै तुद सलाही आपे मेल लहो प्रभ साचे पूरे कर्म तू पावणिया मैं होर न कोई तुद ऐ जेहा तेरी नदरी सीजस देहा अंदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सह समावणिया तुद जेवड मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावणिया हों वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे शुद्ध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविद माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तर देखें कच्ची पक्की सारी अन दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हों वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत हर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुद सला है न रजा कबहू सच्चे नावे की पुख लावणिया एको वेखा अवर न बिया गुर प्रसादी अमृत पिया
गुर कै शब्द तिखा निवारी सहजे सूख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे मन मुख अंधा दूजे पाए लागे जो बीजे सोई फल पाए सुपने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए गुर का शब्द मन वसाए अंदिन सदा रहे पै अंदर कै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे परमे पूला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई आखन जाइए जे पूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया। हौ वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया गुर कृपा से हर निरपौ त्याया बिख पौ जल सब तरावणिया। रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जाती कर अवगण पछोतावणिया। मन मुख अंधे किछु न सूझे मरण लिखाए आए नहीं बूझे मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नावे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार पूरे गुर पाई है मोख द्वार अंदर बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए मन तन मोहया सह सुभाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे गुर कै शब्द सहजे सुख समावे हौ बलिहारी सदा तिन विटो गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जय गुर प्रसादी अंदर पी जय बैठ सुखान हर गुण गावे आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए गुर प्रसादी हो मैं जाए नानक नाम वसे मन अंतर दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवे वड्डी वड्याई हर जी अचिंत वसे मन आई हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी सतसंगत मेल मिलावणिया हर सतसंगत आपे मेल है गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हो मैं मैल गवाए दर सच्चे शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए सिद्ध साधक रहे बिन लाए बिन गुर सेवे सुख न होवी पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप जिता दिखाए आपे आप मिल रहा सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वैसो इक क्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए काया अंदर वणज करे वा पारा नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार गुरमुख पाए मोख द्वार अंदिन रंग रता गुण गावे अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया पूरे पाग मन शब्द वसाया नानक नाम मिले वड्याई हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा आप वंजाए ता सब किच पाए गुर शब्दी सच्ची लिवलाए सच वणन जै सच संग्रह सच व्यापार करावणिया। हौ वारी जियो वारी हर गुण अंदिन गावणिया हौ तेरा तू ठाकुर मेरा शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन भाया सच्चे सेवे सच वड्याई गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुरु तुथे पाए
अनरस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवै मूरख अंध गवारा, फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा, मर मर जमै फिर आवे जमदर चोटा खावणिया। सबदे साफ जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द वखाणे, सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन में जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर से ती चित लावणिया, हर पच्चा गुर भगती पाये सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यो चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हो मैं ममता सबदे खोवे, अंधिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछोतावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, होमे मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके, चौथे पद की सार न पावणिया।

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब खट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया।

सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद सुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कह पै उजल हौ मैं मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर चाए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुरु भगत।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख विहावणिया लिख दिया कागद मस्त होई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हो मैं मैल लागी गुर सबदी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हो वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे पाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए देसंतर पवे दूजे पाए खुआए बिरथा जन्म गवाया कपी बिन शब्द दुख पावणिया तावत राखे ठाक रहाए गुर प्रसादी परम पद पाए सतगुरु आपे मेल मिलाए मिल प्रीतम सुख पावणिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए आप डूबे सगले कुल डूबे कूड़ बोल बिखावणिया इस तन में मन को गुरमुख देखे पाए पगत जा हो मैं सोखे सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए तिन भी तन में मन ना दिखावणिया आप कराए करता सोई होर के करे कीते क्या होई नानक जिस नाम देवे सो लेवे नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा में अकुट पंडारा तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा आपे गुपत प्रगट है आपे गुर सबदी आप वंजावणिया हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महा रस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम न पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हर दर शोभा पावणिया शरीरों पालन को बाहर जाए नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए मनमुख अंधे सूजे नाही फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखे हो मैं मैल जाए बैस सुतान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया नौ दरखा के तावत रहाए दसवें निज करवासा पाए ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर आनेरा ना वसल है ना चूके फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुर पूरे पाग मिलावणिया गुप्त प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हौमे मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवान आर जा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दसो बाबाए गुरमुख विच्चों आप दवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करे पुकारा अंधिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सबद दिखाए सतगुर पूरा आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावण्या। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या बाज गुरु को।

रोवे तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावने आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावने आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावने आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण दाता गुण गावे आपे आप सुनावने आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावने आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावने आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई नानक नाम वसे कट अंतर आपे वेख विखालने माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सच्चो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दो वे मार जाए इक्कत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रह सुख दाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया।

आवणिया आपे वस राखे आपे दे गुरमुख वणजे केई के नानक जिस नजर करे सो पाए पर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर के शब्द पाओ दूजा जाए हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण में आप समावणिया हो वारी जियो वारी सच सच्चा हृदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाओ आपे गुरदाता कर्म विदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोवे गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुर हो में परम चुकाया अंदिन नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया गुर के शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे हर गुण गावे शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया जम जागाती दूजे पाए कर लाए नामो पुल्ले देश जाए परी मोहत का लेखा लेवे रतियो मासा तो

मोह व्यापे कि सूजै नाही गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिविद माया मन मुख न बूझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े हर एक न जाने बिन बूझे दुख पावणिया। जा किस पावे ता आप मिलाए गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए नानक नावे की सच्ची वडियाई नामो मन सुख पावणिया। माज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत पछाणे सो पंडित होई आप तरह सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया। हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया। रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया। हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया। हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया। निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एन सुप्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया। मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया। रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछाणिया। आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया। माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया त्रै गुण दी

माया मोह जलाए सो हर्ष्यों चित लाए, हर दर मैली सो बापावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत खास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजम सच कमावे, गुर पूरे नाम ते आवण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे सहज रहे रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एक रव रहा कट अंतर, मिल सत्संगत हर गुण गावण्या। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चितना आवे, बिन नावे बहु दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथा।

तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड़ियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

अनुज विनोद करे सदकेला सोतम मंता सो वड साहा जो गुरचरणी मन लावण्या पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या जिस तू तुथा सो तुझ त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल पारे किस दरगे खाक न पावण्या।

सो बकता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बांदा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करें सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार ब्रह्म।

चाड़े कर कृपा दास नगर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आप समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

तू साहिब सरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अठाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तोसा हर का नाम।

ए प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

जा। हर जप जपे मन फीरे रहाओ, सिमर सिमर गुरुदेव मिट गए तै दूरे। शर्म आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे। चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे। पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे। सब छड़ाई खसम आप हर जप पई थरूरे। करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

राम। जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित कर हर कंस ना तगती पथ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। कब स्वामी कंक विहूनिया।

अभिमानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए भी गुच्ची है गल पई।

दूत पकड़ चलाएं दूत जम किसे ना देनी पेट छंद खड़ोते खिने माहे जिनसों लगा हेत हाथ मरोड़े।

इच्छुनी वड पागुनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक

नानक जीवे जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट दही मन।

खेड पंजवें खान पीन की तात छेवें कामना पुछे जात सतवें संज किया परवास अठवें क्रोध हुआ तन नाथ।

जिन रच रचिया किसे न जाने अंधा अंध कमाए जा पजे ता ठीक होवे कारत करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो कर्म कमावे तिस कर्म ना होवे पाप कमाने पापी जानिए तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आंख वखाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगर सुजानिए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खो

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ति आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत

क्यों गल लगे ताए तैके चरण कर पाव के लोइन सुरत करे नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी। सदा सदा तू एक है तुझ दूजा खेल रचाया हौ मैं गर्व उपाय कह लोभ अंतर जनता पाया ज्यों पावे त्यों रख तू सब करे तेरा।

पुर कर काया कपड़ पहरा तो वहां सदाकार बग्गा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत।

ਲਾਜ ਤਸਦੀ ਸਾਫ ਸੁਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण, सबे तोल विनाश। पवड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए। फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज भी चार सबक सुनाया। एक होए असवार।

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोहे मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

काओ थान तिना मास्थ वाले एह चलाए राहा नदियां विच टिब्बे जे खाले थली करे असगाहा कीड़ा खात दे पात साई लस्कर करे स्वाहा जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों।

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम से आई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नामे सब विश्व जय खाई है सच्चा सबल सलाह सच समा

करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल, नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है, मुठी तंदे चोर महल ना पाई है, इने चित कठोर सेव गवाई है, जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाई है, क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है, कोई ना आखे तत हो।

बहुर ना पाईताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोलन

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ, तिनको

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसमान, तिस विच

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार, जय कारण तट तीरथ जाही, रतन पदार्थ कट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वत न जाने, हौ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी मेला पहला दखनी, सो सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

जोगी गढ़ दस द्वार पंचवसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाव तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार। सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एक अंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार। अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार। रे मन मेरे परम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम। अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम। आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ। नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर

आ गए होए, जो तिस पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्भ न आवे रास, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवाले बक्स मिलाए, जो पावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अटक कहाया अपियो पी आया, हम पै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लब लोभ मुक्त।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटर होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा किछ लिया तामन पल्ला पाया हल्त न सोबा पल्त न टोई एला जन्म गवाया हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

औखद मंत्र मूल मन एक है, जे कर दृढ़ चित की जय रे, जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे, मन एको साहिब।

एके ते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा।

तरे अंश न चाहे आ जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई।

तेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुभाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार उर्वार पार मेरा सौ वसे हो मिलोगी बां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी।

अंत न पारा वार, मेरा प्रभ बख्शे बख्शन हार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सत सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सोखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ इक दावे इक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बसे नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डिहाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन लया सवार हो मैं विच्चों तजे विकार जो तुर राखियन मेल मिलाए कदे ना बिछुड़े शब्द समाए।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी द्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मार गुर शब्द पछा।

हर कृपा ते हर वसे मन आए। राम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसे न लागे जंपीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगह पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुद आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मनमुख सूता माया मोह प्यार, गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार, सहजे जागे सवे न कोए, पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ, असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूझे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे, इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करे सगले कुल उधारा, इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

सच्चै राते हर वे परवाओ, सच्चै मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पल जल उतरो पार। रहाओ परमे आवे परमे जाए, ए जग जन्मिया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए, आप खुला के प्रभ आप खुलाया। एहो जियो विडानी चाकरी लाया, मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु मिलाए, एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए। नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुरु सेवा ते मन पति आए। से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए ना तेरे आ जाए, हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोहया माए, मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर सबदी होए। गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए। नानक नाम समावे सोए, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। गुर सेवा जुग चारे होए, पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सदा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजै, गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै। रहाओ सतगुर सेवे से महापुर

सतगुर सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल परगासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चक डीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी पर घासिया, बिन पगा बरसत फिराही, बाता तू ऐसे

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आहे। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुर का शब्द न चीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन पगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेल करे गुण सम ले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे करो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान आने, सतगुरु सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नहीं वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवे पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाये संत जनो जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गतकीनी हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन में

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन चावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम।

प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे, रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन दे हो हर आ

दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसै देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम।

हर बोलत सब पाप लह जाई। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रया बनवारी, हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वंज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

सतगुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़ खुशी मन अन रस लाया, हर

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौरी बैरागन महला चौथा। ज्यो जननी सुत जन पालती राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जगते अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट की।

एक मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख शरण आते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर के।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने।

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर

पहुंचिए हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुर की शरणाई पज पो मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवे निज कर वसी है गुरुमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम ले लाहा हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखी है मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटी है ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न पिटी है मेरे मन सेवो अलक निरंजन नरहर जित सेवे है लेखा छुटी है जन नानक हर प्रभु पूरे किए खिन मासा तोल न कटी है गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंक

ज्यो पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्व गला डे। हम जाने कछु न जाने आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाडे। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव सात हर रस सा

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुरु।

आया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टी चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे। रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा बड़ पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग तिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत उठड़ा।

मन अनदिन अनद्रस जियो हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे निक सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदा

हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो। हऊ रह ना सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो। मेरे मन तन आशा।

हो तुद बिटड़ियो सदवारी जियो मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रे बारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो गौड़ी माज महला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब का

जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप अधूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा।

जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुईवा जियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना गए मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दह सारी, माने रंग पोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार समाया, इन विद कुशल होत मेरे पाए।

जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत कर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्द।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौरी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस पहर त्याई रमैया रेन

चाहे हो, गुर उपदेश मने महले हो, जा को राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत पए सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म स्यों लागो रंग, हर हर नाम।

सिमर सिमर सिमर गुण पास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूर है सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पा

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाह सुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौरी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं।

त्रिग तन माया संग राते राव, जो बिगारी कै सिर दीजे दाम, ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम, जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वद

हर गुण गावत रसन अमोली, बनस्पत मौली फल फूल के दे, ए रस राती बोर न छोड़े, आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुर पे हैं सहाय। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर

कवन बापारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सोदा जोरे।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किसु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन करे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेत तो हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरु

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म। साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद। कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन।

अब मत बिन सी दुष्ट बिगानी, जब के सुनिया हर जस्तानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखन

सुखदाता जे नाम जपावे पर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पार।

आते और ब्रह्म परमेश्वर की आये गुरु पूरे ते ए मत पाये रहाओ करण करावन हार दयाले जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

सो सिमरो अनास को नाच, प्रभ चित आए सब दुख जाए, तय सब दिन से हर कहनाए, दिन हर पौ काहे का माने, हर बिसरत काहे सुख जाने रहाओ। जिन तारे बहुत तरन आगास, जाकी जोत जी प्रगास, जाकी बक्षना।

प्रभ सेवक साचा वेसाओ गुरपुरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौरी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ वाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुनः चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप तरे संसार राम नाम जप के कंकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जते भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

विचर आ गया तुचर भोग भोग जल न पाये राम स्नेह किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत।

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का तह दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त

तह सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हर्ष अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक तो दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा।

जिस कर कृपा सतगुर मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका हर।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, का की माई का को बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कह हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जा का मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जा के हर तन सो सच्चाओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग कावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुरु।

चोर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो दरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपै नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंकन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, पाते कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रत्ना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक पला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अग्न सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए।

साधु जन राम रसन वखाने रहाओ। इकस बिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौरी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना। जो तुझ पावे सोई करना रहाओ। सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना। अगन सागर मां व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा से अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुरु पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कान बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो किछु वरतै सब तेरा पाना, हुकम बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुखने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल थल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किस कृपाल विदाता। गौरी महला पंजवा। राम रंग कदे उतर न जाए, गुरु पूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओटे कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

जिसनो जो है दूत कर्म राये, किस्त्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ। साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया। बजे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सुसागर, पार ब्रह्म तेरी।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत आम सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा जल तल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर तूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंतन राता राम कै रंग रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत।

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

आद जुगाद प्रगट प्रताप, निंदक मोआ उपज वड ताप, इन मारिया जे रखे न कोए, आगे पाछे मंदी सोए, अपने दास राख।

साज तूर कर सुड मंजाई, अनक जला जे तो वै दे मैल न उतरे सुध ना पे ही। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार प्राणी। रहाओ आज पैर के आइये गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी मैला पंजवा सांस पाई, गुरु गोविंद पाई। पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार,

आ गए आप तू थान वस जा के आस कह रहे मन हर को जाते तब प्रवान सच निशान जा तो आप करे फुरमान आपके दाता आप प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल राम रवत सद ही सुख पाया।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अमदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लगदा

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

आप जैसे माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल बीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मां रस माए सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत मिला।

आओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी।

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त दिन पंच दुहेले ओ बस अगोचर ठाई जिसका ग्रो तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई।

कर कृपा संत मिले मोहि तुमते तीरज पाया, संती मंत दियो मोहि निरपो गुर का शब्द कमाया, जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते, इहो धर्म कहाँ से आया रहाओ, एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो, एक महल तू आपे

जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनंत कोठरी बहुत पांत करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपने।

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाहे रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण करयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास पग

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आशा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जै पौ नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक।

ब्रह्म की जाली काफी काती जाको साथ संगत विश्वासा पारी ले पौजले तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किस नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभ हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल कराके गौरी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुरु।

पयो प्रगास सर्व उजियारा गुरजान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन सत्या अनकह ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पे

ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

परम सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर।

तू गुर प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

पान सब का खाना रहाओ ऐसो है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुक पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए

गुण गाइए जो होए दयाल सतगुर अपना ता ए मत बुद पाइए। मेरे मन नाम ले जम बंके छूटे सर्व सुखा सुख पाइए। शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए। नाम इष्ट नीत सुत करता मन संग तुहारे चाले।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निज नहीं जाया मन बिछय ही मैं लुजी है जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवे दुखन पंथ कयान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीरथ किए बिच हो मैं बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना।

सुख रे। हरक सोग हान मिर्त दुख सुख चित संसर गुर मिले। राव जौ लो हों कि सोचो चितो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। कोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो। रहाओ मान अभिमान दो समाने। मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पे संत प्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

सलथिया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी पूख त्रिसन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूजत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सजनी चाक चखाइए नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रहिए रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित वेद खोजंता जियो।

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरण आरे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इो मन बिद संदा जियो।

पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच बाप।

जोर तुम्हारे सुख बसान सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी इक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

ये पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ, जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ, सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद, पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप, तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप, गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सिरजन हार, गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ, राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र, सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे, जिस लड़ लगे जीविये पव जल पईये पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार, जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबात। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रतिया।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक ए खेल कठन है किन्हो गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

सरनाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इव जग, देखता उठतावे, फुगत मुकत का

जन नानक हर पै दयाला तो संविद बन आए गौड़ी महला नावा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता स्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता स्यों निहो न लावे, नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ विकियन की सेवा, हरख सोग परस जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उत्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा। रहाओ जो पन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी इनमें कट से रोरे नाहिन, देखो सोच बिचारी। रसन जन्म अपनो ते हारियो, गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम।

ता को नाम ही है मोतरे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिपुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पही सुख आत्मा।

जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मो को एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे साचा, मुक्त पेड़ क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांग है, ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूप बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपो जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरे पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गाता, जो दिसे तो आप निराशा, काम क्रोध बिख फूक पे आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलक अपेवा, जय जय देखो तैसे साचा, दिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ताके दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म में गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी, दिन गुरु पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, दिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाख दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपाकारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका की समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खाता, हरनाखस ले नखो विदाता, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रसत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जनमे जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इस तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्व ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, सोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद्ध सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता।

पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाय मिले सच साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना तृष्णा रात तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वसे बिन फिर तृप्त ना कभू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बो नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृप्ताता गौरी मैला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेद करे बहु पसंद लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसार है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन

किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका इहो जियो, गुर शब्द जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहूं तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हूं मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हों हों करत नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हों मैं कर राजे बहुत आवे, हों मैं खपे जन्म मर आवे, हों मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज घर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले करे आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोई न

ओ गुरुमुख जापे ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख देनी, बिन शब्द मूठे दिन रैनी। फिर दे साच वसे हर नाए, काल ना जो है सके गुण गाए। नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैठे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी। गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार। परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई। गौरी महला पहला राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई। सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे फूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख तोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ। गुरमुख विच्चो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हों मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हों मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु

गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हौ मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन से मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुरु पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई है गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पहे पचन इहो जग परम पुलाया मोह टगोली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श।

मिलिए हरमाए गुर पाव पूरे पाया गल मिलिया प्याराए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए पर तक पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पखंड लोभ तजाए पखंड लोभी मारिए जम दंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख पाथिया महाजाले। गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले। सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल। आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल। गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दास करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल। हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल। गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल। गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल। हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल। वड पागी गुरु।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई तांते इस संग नहीं बहराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

तिस को मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रविया सोए, मन तन शीतल ने चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पाओ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अगन न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द निरिद अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागन सहजे सोए, सहजे होता जाए।

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच तर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु न तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अर्तारे रवसस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बर्त अर्पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जावन मृत न होता तह सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मार

जो इस मारे सो नहीं चलता नी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, इस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरदुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा। हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जाके।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं दान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जाके ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात जाके दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतुर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया।

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिया जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

कहो नानक मेरा गुर सम्राट था गौड़ी मैला पंजवा। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा। आद मध्य जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ, बिन सत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग रख।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से ही होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौं दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अमोल अपार।

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सैसो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहे हो कोट मदे किने गुरमुख लहे हो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहे हो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा।

रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं विसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुर

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

ना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई ना पावे हाथ निग्रह बे बाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम ले वो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमति चित लाइए सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर।

गुर शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक काम।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे दिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमति रंग लाए एहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे प्यारी विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो गुर कै पाए प्यारे रैन सुख सुती जियो अंतर उर्धारे मिलिए प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक।

मत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच सबद सिगारे सच सबद सिगारे हूं मैं मारे गुरुमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुरु विचारे मन मुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मन मुख थाऊ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुरु बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंग दिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहता जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यों मरिए किन में दाम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई करे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमती तन पाईए सेवा सुरत भगत के साची विच्चों आप गवाईए हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारे।

साध गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सब सुहाए, नाम क्या है सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाई है आपे ले लवाए, ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिखिया लोग लुवाए, बिखिया लोग लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए, माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चुकलाए, मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम।

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है, फिर दोष नाही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो।

सिंह माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई दिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे दिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आराधिये जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान

प्राण मन तंग जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जगत नाम मुरारी बिनवंत ना।

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंते नानक जरा मरण पे नरक निवारे पुनीत कर किस जनते सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाये सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाये कल कलेश मिटे क्रम नासे मंत्र

आप पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए। खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए। नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया। सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रम कोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया। वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग। पौड़ी ओम साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे।

एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिस्तार सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुरग नाचे अत प्रय प्रीत साद रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कहिय दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पेक

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपाधारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत त्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आ

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा। श्लोक रात रहे बनता विनोद कुसुम रंग बिख सोर नानक के सरनी परो बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जय रचो कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूती है।

या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

लोके आप अवर नहीं हो, होनहार होत सद आया, ओ आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर ते जपना। श्लोक। आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान, नानक तन तन तन जन आए ते परवान। पौड़ी। आया सफलता को गनिए, जास रसन हर हर जस पनिए, आए बसे साधु के संगे, अंदिन नाम त्यावे रंगे, आवत सो जल नामे राता, जाको दया मया विदाता, एक आवन फिर जोन ना आया, नानक हर के दर्श समाया। श्लोक। यास जपत मन होए आनंद, बिन से दूजा पाओ, दुख दर्द किसना बुझे, नानक नाम समाओ। पौड़ी। जैया जारो दुर्मत दो, किसे त्याग सुख सहजे सो, यैया जाए परो संत सरना, जे आसर एया पव जल करना, यैया जन्म ना आवे सो, एक नाम ले मने परो, यैया जन्म ना हारिये, गुर पूरे की टेक, नानक ते सुख पाया, जाके ही रे एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे, पीत ऊत के बीत, गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को, जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलियो सब कोए, ताको मात

आखर शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनों सो अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

परमत पछताते आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाए पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार। पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए। खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास। खेले बिकसे अनद स्यो जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल। खेद न दुख न दान ते जाको नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनी।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कत्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कै सोए पौड़ी।

ने चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहां स्थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जा को दिया। श्लोक काले सब दिवस सास

काल से जो साकत प्रभु कीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत प्रगट

भागा चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंता।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता साध

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते तेह कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा कै

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

तेस मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता तास्यों प्रीत कर गुण निद गोविंद राए, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले

आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक थाके बहु विध कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनेक बंच बल।

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान

पौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पाप साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अवर्ण को। श्लोक। फाहे काटे मिटे गमन, फतेह पई मन जीत। नानक गुर ते चित पाई, फिरन मिटे नितनीत। पौड़ी। पप्पा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ देह कल युग में पाया। फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान न होई, एक जपो जप सोई। करो कृपा प्रभु।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

एकत साध संग पति आना, दुख सुख उआ के समत विचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे आप जनाई, नानक ते मत प्रग

खसम ताको आसुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए, खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरी कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम, खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत, आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

हैं अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है।

प्रभु के सिमरन दूख जम नसे, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए नानक का कहला गुपाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहि सुनाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से स्वर्ग के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभो न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन निचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्त नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग के हो जात अकेला, ते हर नाम संग होत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कहु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहाँ पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सतत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साढ़ समात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन सो बापाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अगर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे।

सुख लता नाम की महिमा संत ऋद है, संत प्रताप दीर्घ सब नसे, संत का संग बड़ी पाई है, संत की सेवा नाम ध्याय है, नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जापता ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव, अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मेल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन अर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहा होए काची वीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे, पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपाव दर गैनी सिजे, छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल, अगर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे, जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तो कह बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने से बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेता, निर्तन को तन

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल।

बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। जीने हक पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जा की सेवा नव निध पावे, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छपिस नाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो ओर निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। देर कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत फुलास। अपनी अमान कछ बहुर साहले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए।

मतलब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साफ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

होत साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माय समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

सो तन पावै है जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध के संग कलू कतहरे, साध के संग नरक पढ़हरे। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट बीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर वृक्ष मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,

प्रभ पावे ता पत उधार है, आप करे आपन विचार है। दो सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरना आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

त्रिन समान कछ संग न जावे। बौलस कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर कांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत।

अखार, अनित तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे,

जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख उस्तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए।

छुटे संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जूं लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खिंच करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है।

नहीं बुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल। न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड। अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन। आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान। जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग। सह सुबाए होवे सो होए करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए। आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार। जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए। किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभु की जोत सगल कट सो है। तनमंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ है। आप सूराजे को कहावे प्रभु की कला बिना कह धावे। जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार। जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। जो पाखान नाल चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास। जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख कर देवनहार अवर त्याग तू किस जितार। जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान। कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाभ के संते संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए। क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नानक का कह सब बलिहार है। चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये। अनेक विघ्न पे साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे। ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ने पाया। मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किसका ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोदन निर्मल।

पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन थे नाओ मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरगस्त में भोगी चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल पर होई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेख करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सब पली सत नाम प्रभता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया किस आया स्वाद तब के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वड पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिन ना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आ गया कारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे
अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराखे ताकि दखमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप, ताको राष्ट्र देकर हाथ। मानस जतन करत बो पाक, किसके करतब गिरते जात। मारे न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत इहो मन तन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र ताने, मंत्र नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हुआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे।

सब पाप मिटावे। अवर से आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुरु सिख का हलक पलक सवार नानक सतगुरु सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहु बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर कर निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभु जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपो हो बसे सगल व्याद मनते खैनते जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे।

हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कहनाए दैर्ज स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा कह हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास देद विचारे हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्बनता इनसे कहो तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कवन छुटकार अख हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना धो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रास सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मन आहे एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्याव। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गाम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुकुट जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छुकुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नारक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे। गुरपुर सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सीछार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग समात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप तार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख

आपन आसन तह जन्म मरण को का विनाशन जब पूरन करता प्रभु होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

किनारा, बहु बेअंत उठते ऊंचा, नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग बंसावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओब्ख्यान। आपन खेल आप कर देख है, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज, आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात पावे ता श्रेष्ट उपाए, अपने भाणे ले समाए। कुमते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ, अंतर बार जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येक कोने रा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहुंचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर न आवे जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ध्याए। निरपौ जपै सकल कौ मिटे, प्रभु कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत कुदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जानी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगटी था, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्फट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है।
नवनिध अमृत प्रब का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाई है गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार तब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए। कौन निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते हो सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर वो का सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथे

अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार से रहते, राम नाम सुन रसना कहते। हर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी।

ज्ञान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए अस्थान बहु न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध

पास सुंदर चतुर तत्व का बेटा सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी।

हिरे हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभु।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रिय रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्भ उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

मन में चित में पूरन भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक इहो संग

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

कुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब हो।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख काटे होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

ज्यों बोलन तिवै सुहन, नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन। पौड़ी तू करता आ

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनो दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे, तिन विच्चों तिस्तिया न कोए। सतगुर सबना दा कला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जिस साहिब पा

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निर्वैर निरंकार, जिन जपिया इक मन इक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट।

सच सच्चे पावे जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिन के मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगड़ आए ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन ओए तेहो जेहे दैव जाए नानक दोही श्री खसम आपे वरतै नित कर कर देख।

करे कनेरियां, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अंकार न विचों जाए, अंकारियां नो दुख पुख है, हाथ तड़े कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए, ज्यों लोहा पारस पेटी है, मिर संगत सुवरन होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यो पावे तिवे चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए, गुण की साध तिन स्यो करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम से आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नाम ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फेर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जां हर हर नाम से आवे, हर बाता आस सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उस दा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप सो वरते, उस दा पाक छड गुर पाक बह जाया, जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आख सुनाए, पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया, पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है, सो ले जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईदा, सच सच्चा सतगुर इके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वश के, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाएं दे, तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे न पावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया, गुरमुख बस जमायन, मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने।

हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसाणी जमी पाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख त्याया, जन नानक नाम आराध्या, आप तरिया सब जगत तराया। महला चौथा, सारा दिन लालच अटिया, मन मुख हो रे गल्ला, राती ऊंगे दबिया नवे, सोत सब चिल्ला, मन मुखा दे फिर जोरा, अमर है नित देवे पला, जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे, से अपवित अमेद खला, काम व्यापे कसुद नर, से जोरा पुछ चला। सतगुर के आखे जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला पौड़ी। तू वे परवाओ अथाओ है, अकुल क्यों तुलिये, सेवड पागी जे तुद त्याइंदे, जिन सतगुरु मिलिये। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, सतगुर की रीस है, होर कच पिच बोल दे, से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, ओना अंदर होर मुख होर है, बिक माया नो चक मर्दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा, सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले, जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वक कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास, कालन कूड़ियार न लबनी कितए खाए पाले, जिना सतगुर का आखिया सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कितरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओह आप वरते अपनी वथ नाले, जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा, जिना अंदर नाम निदान, हर तिनके काज दे आंदे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास, जा करता वल ता सबको वल, सब दर्शन देख करें साबास, साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करें रह रास, गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया, गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित बक्से चढ़े सवाया, कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया, जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। पौड़ी, तू साहिब अगम दयाल है, वरदाता दाना, तुझ जेवड मैं होर को दिस न आवई, तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मो कुटंब दिस आमदा, सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे औरत चित लाए दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याय तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा, अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे, अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे, जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे, जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे, ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेशा परम चुकावे, सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत शरण आवे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदियां उठदियां हर नाम ते आवे, जो सास दिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, किस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे।

जो आप जपे अवरै नाम जपावे पौड़ी। जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े, जो मन चित इक अराध दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुद नो सब त्याय दी से थाए पए जो साहिब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कडे मुख खोले, मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा। मल जूई परया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वे मुख वे मुखैनो पाया। पास न दे कोई बहन जगत में गू पड़ सगवी, मल लाए मन मुखाया। पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख कर कै पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया। पर सुनिया सबत जगत विच पाई वे मुख सने नफरे, पौली पौदी फावा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी वे मुख रलना ना मिले, ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया। हलत पलत दोवें गए नित पुखा कूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मार पचाया। एहो अखर तिन आख्या जिन जगत सब उपाया। महला चौथा। साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे जिसदा नफर किथों रज खाए, जे साहिब कै कर वत होवे सो नफरे हथ आवे। अनहोंदी किथों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे न कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोल दे से वचन हो वंदे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख न पायन मुग्ध नर संत नाल खांदे। ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार चढ़ंदे, ओए विचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे। जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे, वैर करें निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे, पेड मुंडा हूं कटिया तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याय दा वड्डी वड्याई, कुछ दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही इक तिल किसे दी कटाई। सच साहिब सतगुरु के वल है ता चक चक मरे सब लोकाई। निंदका के मोह काले करे हर करते आप वदाई, ज्यो ज्यो निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया, नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिए ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आने वाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कढ़ न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आख्या को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत दुआई। कोई अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रव सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उज्जड़ परम पवाई है ज्यो चार।

जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो औखा जग में होया। नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया। हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया। जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया। गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा कार संगोया। जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत। सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत। इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस्तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे। हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे। जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई ना है। हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है जिन हर उठा मन माहे। कोई आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख।

आए से जंतु भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

सच्चा सबद पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

नाही जाए कूड़ लैन पे डारे जे साकत न रखावाये लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आरा दिया जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट एक वरत।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो अपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

पंजवा अब खद सबे की तेन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदे

सुख ना पाएन मुगध नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए वेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल तर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबोर

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिक्खा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिक्खा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे। गुर सतगुर अगे

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड़ वड़े जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुख।

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरना।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रहे न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरी है जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रव दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाऊ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खा दे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस। नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों।

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

तट तीरथ नहीं मन पति आए, चार अचार रहे उरझाए, पाप पुन दोए एक समान, निज कर पारस तजो गुण आन, कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाहे परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

ता सुख बिसरे परमानंदा। कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गए मरे। माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड। राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हौ तप का हीना। अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम। हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसा।

हार चुके। जम से उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सुजन पे चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मान।

पाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप अब मन उल

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

बोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

आग। कौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत पुकारण जा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

पापी मन है मार कवन सिद्ध थापी कवन सो मुन जो मन मार है मन को मार कहो किस तार है रहाओ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन पगत न होई कहो कबीर जो जाने पेओ मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ गौरी कबीर जी ओए जो दिसे अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे कहो रे पंडित अंबर कास्यो लागा बूजे बूजन हार सवागा रहाओ सूरज चंद करे उजियारा

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ, काको जरे आए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे सुख देओ।

जो जागे चेतक सिद्ध पै लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प कर तारे जो हर हरे सो होए ना आना कह कबीर राम नाम पछाना।

نہ کوئی، کون کو پوت پتا کو کا کو، کون مرے کو دے سنتا پو، ہر ٹھگ جگ کو

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

जल सल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग गुण से क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाज।

कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माह निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर्म

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाट लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़िए जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

प्रेम होए। जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे हो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे हो रे हीरा लाल अमो

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुबत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर।

अलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस कयो शीश बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे निरपय होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज राहो मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया।

कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव गौड़ी। अग्न न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेर नावे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कठी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर, यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब मन।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ، ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो، या तन जोबन अर सुत दारा، पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे।

सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए, जो संपै

पासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार ना।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डर पै सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मर...

जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवायो।

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, थोड़े छाड़ ना दह दितावा। खसमे जान खिमा कर रह, तो होए निखे ओ अखे।

गढ़ सुमेर टूट जब आवा, जे गढ़ गढ़ियो सो गढ़ में पावा। नाना रण रू तो नर नहीं करे, नानवे ना फुन

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जा

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन में।

निवारै, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कीर्तन में

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार। सत संतोष का तरो त्यान, कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश।

हरियले। राम कहत जन कस न तरे रहाओ, तारीले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तारियले। चरण बद्धिक जन तेऊ मुक्त भये, हौं बल

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुभाय।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर।

हर त्यावे हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिन का पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सरां तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवन अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाय तेरी तिलवडियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरख।

मानस मूरत नानक नाम करणे कुत्ता दर फुरमान गुर प्रसाद जाने मेहमान ता किस दरगे पावे मान आसा मेला पहला जेता शब्द सुरत तुन तेती।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सबादि क्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट दया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो पुजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे परमल।

लागी मैल मिटे फतनाए, गुर प्रसाद रहे लिव लाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ, नानक बख्शे।

एक तरण गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनों कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकत कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु पेद, अठ अठ मज्जन हर रस।

प्रसाद रतन हर लाभे मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रमनी रवे बंधन नहीं टूटे विच हो मैं परम न जाई सतगुर मिले ताहू मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर्धारे भगत वचन जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मने समाए नानक कृपा।

0: रोक रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहा। अनत तरंग भगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अप

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कह।

मन आए नजर करे सा सतगुरु मिले सनमत नानक पव जल करे हासा मेला पहला पंच पदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोख।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सतनी साने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे।

उपकारी जा पंच राशि ता तीर्थवासी कुंगरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

दारी माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सह सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार।

कै कोई जा पिस्तावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सरवरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हूं जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिन

जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश। इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जम सो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर इकटे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण केते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड विलायत देश वे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सूत पोती कीनी, तू साहिब हो सांगी तेरा, प्रणवे नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे। मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो। पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो। पंच सखी मिल रुदन करे हार, साहो कजूता प्रणवत नानक ले।

खिमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बो गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगे जुग जोगी परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्पूरे नादं। पत विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिख तीरथा सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोशना होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसमे

जेको नौत आए वड्डा साध करे मनभाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाणे मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम।

हर दर्शन पावे वड़ भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खट दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए बिरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख सां तो लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा।

शब्द समाये, सेवड का घी जिन नाम से आया, सदा गुण दाता मन वसाया, जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ, आपे देव सह सुभाए, नानक कीमत कह न जाए, ऐसा मैला तीजा, सतगुरु विच वड्डी वड्याई, चिरी विचुने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अदम अगो

हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुदाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्मना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एक छू छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मैला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे तिल न पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वकार।

सुहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस

जेहे कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप सदा।

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभु वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तै वेखा सोए गुर।

पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मनमुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा बहुपुर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सो जी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आशा मेला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोविंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुरते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रबले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं ना जाए पूरे सतगुरु दिति वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए ना पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए जिसनो बक्से साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए। आसा मेला तीजा नृत्य करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ दीवा बले न सो जी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख निरत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मने आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर सियो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवा काफी मेला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के पाने सतगुर मिले सत सोजी होई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई रहाओ। इस युग में निरपो हर नाम है पाइये गुर विचार बिन नामे जम के बस है।

जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू करता सत्यार में दासाई

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

पहला चौथा किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरह और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तरह किया जिसका कोई समरथ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा महला चौथा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुठा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन चीता। रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमत बिगता। नाम बिना पुष्टि मोहो अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा। हर हर हर जस जपे वड पागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आ गए हम आदेश राओ गावे राग पांच बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

जोगी जंगम श्रेष्ठ सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जाने हर लावो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई हों हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिवलाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख ना लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राधा सा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मरण तुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुर पूरे सा वास चलन जानिया लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा पूरब लिखे देह से आए माया चलन आज के काल।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया, जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चार मेल बुलाया राव, अंतर नाम निदान गुरु मुख पाई है, अंजन नाम से आए हर गुण गाई है, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है, नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन पर गास सच्चा।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हों एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हों प्रीत लाई दूजा पाओ रिज।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा। माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई, हो हर बिन खिन पल रह न सको जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत पयो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़नावा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

मैं प्रीत दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सो

आचार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तौ सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सत परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम।

अमोल वचन अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बख्शिंद सौदा गुरमुख किने।

माया मूठा चेके नहीं, परमे फूला बहुती राही। बाहर पेश करे कनेरे, अंतर बिखिया उतरी केरे, और उपदेश है आत्म

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा,

तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साब बंदी ते ले चढ़ाए, साब संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अत सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिस है तिस सर पर मरना, मुआ होवे किसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज परवासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत कर हो।

विशेषता अस्त्र रटक परे थे चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वे पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरुष सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौक दे एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

सब अंत ना जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोह को कहा डराई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वे साहो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर के अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सब ही पर पूरा, रहाओ चरण कमल रिद अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राये, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जा रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वस्त बाहर उठ जाता सुनी न जाई सच अमृत का था वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेव बिरानी कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर प्रतपाला आसा मेला संजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृप अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार।

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तांते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुरबोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पात कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोड़ी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पहे बिस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कस छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रस माहे, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके गुरमत

भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उपारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआ बिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी तो चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन।

आधार अगद करे सास सास समारे न पोहे अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने उपदेश करे आप न कमावे सत शब्द न पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी ता को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम ना

ऐला जन्म दो आया, पहुँच न साके काहू बाते, आगे ठोर न पाया। रहाओ किस पया निंदक बपुरे का, क्या ओ करे बिचारा, ता बिगुता जै कोई न राखे, को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर।

ना छुपाया कूड कपट वंश निमुनिया दाया बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा उदम करत हो गय मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ

अज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

चित मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई खियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुरु दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस दे ही पाई जित प्रभु अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकी।

बाँ कोरते बाँ पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल वरण बन्योरी महामंत्र गुर हृदय।

प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाए इको अहंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा।

प्रभ आप सिंगार सवारन हार रहाओ दूजा आसा महला पन्यवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली है दूर चुकाने हो रहा सकी सहेरी परम दया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी आन कदम ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा बार सूत सग

बहुत पिहाला, सगल चरण की इहु मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया। आशा मेला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास दिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जिनकू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आशा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

जो तुम दे हो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई, रहाओ तुमरा दिया पहनो खाई, कौ प्रसाद प्रभ सुखी बनाई, मन तन अंतर तुझे त्याई, तुमरे लवे ना को लाई, कहो नानक नित इवे त्याई, गत होवे संतै लग पाई, आसा मैला पंजवा। उठत बैठत सोवत त्याये, मार्ग चलत हरे हर गाये, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग सगले मन लखा, राव कारज काम बाट काट जपी जय, गुर प्रसाद हर अमृत पी जय, दिन सरैन हर कीर्तन गाये, सो जम जम की वाट न पाये, आठ पैर जिस विसरे नाही, गत होवे नानक तिस लग पाई, आसा मैला पंजवा। जाके सिमरन सुख निवास, तई कल्याण दुख होवत नास, अनद करो प्रभ के गुण गावो, सतगुर अपना सब सदा मनावो, रहाओ सतगुर का सच शब्द कमावो, फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत, हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अंदिन चीना, आसा मेला पंजवा। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंट माने, दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट हुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पंजवा। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो,

से पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पावना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहु नानक प्रभु करी मया आसा महला पंजवा। सतगुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा चूठा मो मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही ठाओ गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खुए कै ओही कट कट अंतर।

रहाओ। मूर्ख मुगद अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेत न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आए इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता।

सारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोए लादी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे उचित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जा के गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा विकराल ठाकुर अपने कीनी दात जलन बुझी मन होई सांत मिट गई पाल मन।

को जन पूरन रहे अधाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानक की कहो केत चलाई, जाकी सेवा दस अस्त सिधाई, पलक दिष्टता की लागो पाई, जाको दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मेला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणक बिना।

तार उनके संग तू रखी पलोल उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत उनके संग तुम साख जगत उनके संग तेरी सब विद्थाटी उस बिना तू हुई है माटी ओ बैरागी मरे न जाए हुक्मे बादाकार कमाए जोड़ बिछोड़े नाम खाप अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा ना ओ मरता।

ता हमको तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जचना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पाठ कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण।

मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कई मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख।

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे, कौन उपमा दियो कौन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटुंब दिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे। अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे, कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे। आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ, कनक माणिक गज मोतियन ला

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहि, नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना एक।

कमाया गुण रस रस गावे एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आशा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट आही आसा मेला पंजवा हर बिसरत

सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्र।

जावे, पकर केस जंग उठारियो तद ही कर जावे, लोग बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया, जिन कारज रहे ओला सोए कामना करया, ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, हम स्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन पराना रवयो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सब को तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हां, परम पद पाये हां, उआ रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जा गया हां, नानक बड़ पा गया।

पिस सुजै हां पतित उधार ले हो हां नानक अरदास ते हो मेरे मना आसावरी मैला पन्यवा एक तुका।

नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए।

सिरत भी पूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल ते दूर, जल में ज्योत रहा तरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजर पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहूने माथे छाई, साच तनी जग आए बिना सा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहा, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकच कछो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार, अटल अछल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार सुमावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सोपीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना। इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ। एहु मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मिले काल कंटक मारे सच पीले। एहु मन कर्मा एहु मन तर्मा एहु मन पंच तत से जन्मा साकत लोभी एहु मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई। एहु मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर पत राखे। एहु मन राजा सूर संग्राम एहु मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास इकत खाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख एहु मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी। एहु मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ।

बिन गुरु राम नाम कत नहीं है, राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई, राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो, आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ, तनिक कामनी हेत गवारा, दुखदा लागे नाम विसारा, जिसको बख्शे नाम जपाए, दूत ना लाग सके।

अवरना औषध पंत न ममता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विम गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवे थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया टुटन मोतसरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोह बंके, ऐथे दिसे नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई। राव कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंगोली हरमा, होया छाई माई, इस जर कारण कहीं विभूति, इन जर कहीं खुआई।

लड़ाई रामे तेग वगाई ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस्त चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी छकुरानी इकना पेरण।

जाए रुआ हुक्मी हुक्म चलाए विगसै नानक लिखिया पाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मैला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें नित तीर्थवासा आप न चीने।

गुरमुख नाम ते आईए मन मंदिर पी जय रहाओ। कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने। यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बने आई। कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई। मन मुख पत्थर सह

उसमें ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिय, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूटी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

पाले, गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले, जम्मण मरना आखी है तिन करते किया, आप गवाया मर रहे फिर मरना किया, साई कार कमावनी तुरकी फुरमाई, जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई, रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई, नानक साहिब मन वसै।

दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमा

जिस आप कर आए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा महला पहला, रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाक सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी। मैं ओ लगिया।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म।

नीले अग्न जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरुमुख जानसी, वेला सच पर

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुझ पावे ता गुरमुख बूझे।

जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समाणी। आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पग सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दीजे आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परख सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं।

हरिए मन निर्मल होई। सतगुर मिले आप गया त्रिभुवन सो जी पाई। निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई। अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुर ता मिले जान नजर करे। किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए। नानक नाम निधान मन वस्या वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए। तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई। एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ। इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे। विन सतगुर पाई न जाए। पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए। आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाए। आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई। जी जंत सब तिस दे सब

आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बसियन अंतर।

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जो आई कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

का बोले ना निवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ। गुर कह पै पाए जो रते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी ते तिसे ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

पासे मेल लै एक दरगे मार कड्डे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर उतवताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची कछ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हो मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए मैं।

जिना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरुमुख बीजे सच जमे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती दे।

जिन्ना फिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रहे विचों आप गवाए तन मन शीतल मुख उजले फिर कै पाए प्यार से सुखाली फिर

मिटिया सफल जन्म हमारा नाम नवैनित पाया परे अकुट पंडारा आवे इस राशि के व्यापारिये जिना नाम प्यारा गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा भगति सार न जाननी मनमुख अहंकारी तुरु आखुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना हो वही ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाई है गुर भक्ति मन तीर जितनो भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय एको नाम वसे हो मैं दुबदा मार भगता की जत

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाईए ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर

करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार। सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए, गुर सबदी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया माया।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग

नाम स्यों सुख पुंचे सब थाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध च्यों निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद।

जुग जुग रही समाए। जो तुद पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारा।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

पढ़िया पंडित आप सिया छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होवा परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होवा तिन गुरु मिलिया जज्जे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी तीख पवया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं।

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया, देखे बूझे सब कुछ जाने अंतर बाहर रव रया। फफे पाही सब जग पासा जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत पज पया, बब्बे बाजी खेलन ला।

प्राणे अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाये, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाये। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिख्याता।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी डर सच्चे प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू, सच मिले वड्याई। नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग।

कर्म विधाता दुख विसारण हार जियो, दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा के रे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाए साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

काचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

शंकर पहला। हम घरे साचा सोहेला, साचे सब सुहाया राम, तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया।

कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम, बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे, देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए।

राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर शांति आई सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै

भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोहे।

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिवलावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन स्याणप छोड़िए।

पाप कटे अंक परम पद पावे। साचे नाल तेरा दंड लागे गुरमुख सदा संभाले। त्यों कहे नानक जय मन तू तामदा तै हर तेरे सदा नाले। सतगुर मिले तावत थमया निज कर वसिया आए। नाम विहाजे नाम लए नाम रहे समाए। तावत थमया सतगुर मिले दसवां द्वार पाया। तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए। त्यों कहे नानक सतगुर मिले तावत थमया।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लग्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गर्भ लागा जाए मुग्ध मन।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहिसा गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चय गुर

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंस दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरु।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार तर

राम समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम, मन तन अर्पया।

दुख बिनासन पतिस्पावन हर नाम दियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम दियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जप

हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो। गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए हर जपत सुनत।

गुरु लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आवन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लग

गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई हर

वे में खिन खिन पग को में जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख पागा रत्ती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब एक दृष्ट समत कर देखे सब आत्म राम पहचान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पा...

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले।

जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखा।

सतगुर तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभ नैनी दीठा।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर मैं बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौ निदे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड़ पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मिटाया पे कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आशा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निद गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आम न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माछली

आप लिए लड़ लाए हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबूते प्यारा राम राजे। सबूते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आशा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पी है जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग न डरपी है। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इहो मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण कतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी तां डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक पयम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पावन पतित पुनीत नाम

सह सूर्या अगाद बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगाश देह दिस एक तह दृष्टाया नानक स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

संत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न पावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन वे अंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही नेको पै प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संगुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुण गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिनवंत नानक रंग रा

अक्षर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

खोजंती। नसवन जो किल विखो परता पर आया, दूते देन पया गोविंद प्रगटाया। प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज जूठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया। मन शांत आई वजी वधाई ने अंत जाई पाया, बिन वंत नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया। नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत पहे पलायन। परम तीरज सह सुखिए सात संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब सजे। गय कंठ लाए गुर मिलाए।

जपत अधायण बिन हंस नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निज सिद्ध चरण गहे ताके हारा सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा बिन वंश नाम सर।

संग देखे करणहारा काय पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पज साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते। बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवनहारा। दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पदन संगे कुल समूह आतारी है। सिर साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ पर खुनहारा, पूर्ण कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तब काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर कंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए। मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक वड पाग पाई है सुख सह।

कमलापरम पीत कमलापरम पीत हे तीक्षण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अनदिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओहो बिचरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अत कना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुण कना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह संताप चितवो चितनाथ हे रख लेवो शरण अनाथ हे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लुबद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुवंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे आपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदियां गुरबिन को रंदार महला पहला नाम गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्यान सच जो मर जमे सो कच नि कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाउ ना पायन कूड़िया मौका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आलप ताल लटकिया के मुंडड़े लटकिया के हार जितन पाइये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कटना करड़ा सार कर्म मिले का पाइये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करें जे आपनी ताम अदरी सतगुरु पाया एओ जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप दुआया जिन सचो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल नाक मुझसे ज्ञान होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलाइन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपव निरंकार सच नाम जाका की आ सकल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो सिक्की सिक्ख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधानी आन गा पंखी पौंदियां लैन न पा सूए चार पुआई जंत नाम पौंदियां गंत नांत बंधन बंद पुआए सोए पय किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ ना जाई सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ सिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक ना जाइए जियो फिन सब तिसदा देखा जाए आग गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए जे जरवाना पर हर है जर वेश करेंदी आइए को रहना परिये पाइये श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनत्या उनजे ते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपदे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना सोख करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर पांडे इत्ता किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान विहूणा कर कतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाए हौ मैं एही बंदना फिर जो

आई है, फलते में हो पाई है, जे में ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखिया ता तोड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। श्लोक महला पहला। सत्काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल, बियो बीज पक ले गए अब क्यों उगवे दाल, जे इक होए ता उगवे रुचि हुरत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए, पैज खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई। महला पहला। लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हो आशिकदार, काम लेव सब पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार।

0: मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार परमी तरम करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड मह कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला गदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सवनी चाला मारियां करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया कितना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर्या तू सच्चा साहिब सुख

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा, एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवा।

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताओ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्य ओमिया विचार गए विचारी है, मोह चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्गै रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गै रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गै रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गै रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

हाल विचारंग गलमाला तिलक लीलाटंग दो तो वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सखो कठिनो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां जिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना स्वरूप महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाहो कतिए बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला। नाई मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वै निदारी तग ना तैरी तग ना अखी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गो ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर कर न जाय तोती टिक्का तय जप माली तान मलेच्छा खाई अंकर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे करंदा महला पहला। मानस खाने करे निवाज छुरी वगाए तिन गलता।

वासुतक कूड अखी सूतक वेखना पर क्रिया पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक हंसा आदमी बद्दे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म।

पौड़ी जिथे वे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंडा मूल न कीचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल न हारिए।

न्यासन न पाए साधु, आप गवाए सेवा करे ताकि पाए मान, नानक जिसनो लगा किस मिला है, लगा सो परवान महला दूजा, जो जी होए सो गुवे मौका कहे आवाओ।

परमात साहिब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार ना।

लाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखाने, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहो, काकी मात पिता को काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कहताई, इस बंदे से

एक तो के संत संग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई, सहज बिलोव जैसे तकना जाए रहा। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब सिंजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

इतना राक्षस माया, चिंतपवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा, देव विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, आशा

का सार, होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुगद फिरे, चरण शीस पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर कन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन रासन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे, रहाओ रोजा तरह निवाज गुजारे कलम।

आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्तरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर।

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते खाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दसें बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

तिन साच पछाणिया तिन सरपनी काई, सरपनी ते आन छूच नहीं अवरा, सरपनी जीती कहां करें जमरा। ए सरपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कहे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो फूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेहि रावण कर खबर।

ज्ञानवासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कतमू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर सौ मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा मा

आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही में तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब

गचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। आशा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहरते ही है बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुन।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई।

चीरे अंग न मोरो, पिंड परे को प्रीत न तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। आशा कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना। तरण आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आशा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस वै कुंठ न जाना। लोक कतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कहत कबीर नरक से

का मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जम की फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रांगन रांगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम ते आवो सोईने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर सो लागा आसा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बग त्यान मांडे काहे को की जय ध्यान जपना जब ते सुध नाही मन अपना।

काल पास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तक गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। आशा

आओ संत आचरण संत चो मारगे संत चो ओलग ओलगणी और इक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा मादो सत्संगत सन तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ तुम मकतूल सुपेद सपैयल

तुझे चरण अरविंद पान मन, पान कर पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समान।

माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया

राग गुजरी महला पहला, चौकड़ी कर पहला। तेरा नाम करी चरनाठिया, जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जेर ले, कट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम ते आये, दिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर दे पखालिये, जे मन तोवे कोए, झूठ लह जियो मान।

कर रहाओ। राव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दो लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द सुन जागे।

ताए जित कम हर विसरै दूजे लगै जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेविए गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर से की चित गहर है जरा का पौ ना हो गई जीवन पदवी पाए रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुरु का पाना चित करे सतगुरु आपे कृपा करे गुजरी महला की जा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहा सेव बनी जियो राव हर मेरा सुमृत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधक हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साथ अंत होए सखाई हर दिन होर रास पूरी है चलदिया नाल न जाई हर मेरा तन मेरे साथ चाले जहां हो जाऊं तह जाई सो टूठा जो टूठे लागे सूठे कर्म कमाई।

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसे, सहजे रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। से मुक्ते जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रह करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

जा पंच पदे ना कासी मत उपजे ना कासी मत जाए सतगुरु मिले मत उपजे ता ए सो जी पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए ए मत तेरी फिर रहे ता परम विचों जाए रहाओ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख होवे नास पंच

ही अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पहे पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर सबद सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कतनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह आसराओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले कृपा से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभु ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदा।

प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

आवो हो अंगन राम नाम नित्याए सब सुख सब गुण सब निधान हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाए मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाए गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी कर कृपा लोच मेरे मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख पावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभु हर हर शरणा तिन दरगे हर हर देव दे आई तन तन सबा सह।

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काश सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

तारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुकत न को पावे मन वेखो कर बिचारी। असत मज्जन कर स्नाना प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेख बुद्ध परदासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया। निमक न बिसर

रहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर को का खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु।

हर हर सदा पंजो जगदीश रहाओ। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। काकड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आशा, कभे न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो, हर चरणा हो कौला। नानक दास।

काट का तुय अंतर सर्व निरंतर रंग रव्यो रंग राता पै कृपाल दयाल गोपाला का निरपय के कर आया कल

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान मह ते जस काटे। रहाओ माया के सन बंग सेन साथ, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, तिस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण ना बूझी। सुमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया, तै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक यो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदर सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

दुख दिन से सुख किया निवासा, कृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पैर

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई ब्रंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभु पूर रहो है एचो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभु को भगत वचल बिरदायो करे प्रतपाल बारक की न्याय जन को लाड लड़ायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आरा दो प्यारो निमख ना की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला मोहन प्राण मान रंगीला बासरे।

मुन योगी शास्त्र कहावत सब चीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तेती सा तीन की हैरत कछ न रही। बलवंत व्याप रही सब मही।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिन का बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनसो सगल ने होरा। गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ से की रंग लाए, मन को इह उपदेश।

ते पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा। तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पही करते की और आस बिदानी लाही।

चुत चुत वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपे नानक दास।

करके तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवसद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

कपटे अनित जुगत कर कायो बिसरत प्रभु के ते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

पद सदा भगवंत रहाओ। नाम एक आधार भगता एक आगे तेक, कर कृपा गोविंद दिया गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक, करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

मिटै सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत मीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल प्रभ ऊंचा।

राम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पद।

निर्मल गुण प्रभु गाए, गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी।

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन सुखवंते ना

होगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अवगत त्याया गुरु प्रसादी पाया। ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर भगत ना।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुर वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम ना अद्वार आए। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म ना

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अवर

hukuman sir hukma. ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मेला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव पै त्रास नास कृपाल गुण ने

हरन मद मोहो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पय गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर के पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसे गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे कि वो मन मुक्का आचार, हर नाम ना पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई।

आवे ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया, माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पाने।

जिस आप वड्याई देवे पौड़ी, माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक

सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हों मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवे आ जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिव लाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

केसनो कूड बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती रव रहा, जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए मन मुख पले न पाए। तन वपारी नानका, जिना नाम तन खटियाए। पौड़ी, मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे। दुखों में पाप कमाए मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा, मन मुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तर्म रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई मन मुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी,

मुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बुलाए कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया गुरमुख अंदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया महला तीजा। सत गुर जिना

जिन परम पुला मार्ग पाया महला तीजा। त्रै गुण माया वेख पुले ज्यो देख दीपक पतंग पचाया। पंडित पुल पुल माया वेखे दिखा किने क्यों आन चढ़ाया। दूजे पाए पड़े नित बिखिया नावो देख आया। जोगी जंगम सन्यासी पुले ओना अंकार बहु गर्भ बधाया। छादन भोजन ना लेही सत पिखिया मन हठ जन्म गवाया। एतड़िया विच्चों सो जन समदा जिन गुरमुख नाम ते आया। जन नानक किसनो आख सुनाई है जा कर दे सब कराया। पौड़ी माया मोह प्रेत है काम क्रोध अंकारा। ए जम की सिरकार है एना ऊपर जम का दंड करारा। मन मुख जम मग पाईन जिन दूजा पाव प्यारा। जम पुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा। जिसनो कृपा करे।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वडभागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करे सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम फूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरुमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरुमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले त्रिभुवन सोजी पा।

हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय। हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय। हर कै पाणे सुख पाई हर लाहा नित ली जाय। हर कै तख्त बहालिए।

बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समा।

तार, टाडी दा कर पाए सी सच रखे उर तार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईया दरगे मो

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किच आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप परवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहना है पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौ तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बा सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर बिशन अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा चंग्याई आलत करे बुरियाई होए सेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी ए नाहित नानक तै सह ककिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा करकना तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहालिए मोहि निर्गुण चै थाओ संत तरमसालिए। श्लोक महला पंजवा साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर। महला पंजवा पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अठसठ तीर्थ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किछ जाने जान बुझ विचारदा अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा जिसनो लाए सच तिसे उदारदा जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा सदा अपग दीवान है हौ तिस नमस्कारदा। श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ। महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे नानक नाम अराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेशिया तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन के संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ ओथे जापिए मन को होए संतोख पुखा त्रापिए जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए। श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख सह आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हों टूंडे दी जग सब आया जन नानक विरले के पौड़ी। आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपते होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुज निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछियां फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा देव सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहां सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लद्दम लब्बन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप
ਤਿਸਨ ਬੁਝੀ ਆਸ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਤਰਾਪ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਖਸਮ ਜਿਸ ਲੇਪ ਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਸਹੀ ਜਪਾਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਪੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗਾਤ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਮ ਰਮੋ ਬੜ ਪਾਗਿਓ ਜਲ ਸਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਪੌੜੀ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਦਰਗੈ ਪਵੈ ਥਾਏ ਭਗਤਾਂ ਤੇ

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। ऊटत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों

तरिए पाओ जे ओ दियो ता ओ भी देवा कह नाम दियो हम हर की सेवा गुजरी कर पहला मले ना लाछे पार मलो पर मलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे

दूध तो बछरे थनो बिटारे हो, फूल पवर जलमीन बिगारे हो। माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदें बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा।

कह रविदास कवन गत मोरी, गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बार पेख उदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा, रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया, काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो निर्वाणी। काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही। बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे।

बेसवा जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल वल अवतर है। अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल वल अवतर है। अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बद तिलोच।

सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

बुरा कहो हम कन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभु तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। ज्यो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नक्ती। ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाहि हर स्वामी तिन बिगड़ रूप बेरक्ती। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने ओहो हर दरगह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित्र मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाये प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याये रहाओ अंतर एको बाहर एको सब में एक समाये। काट अब घट गविया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंत न कतहु पाइये। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाइये। देव गंधारी माई होन हार सो होइये राज रहो रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोइये रहो कह फूले आनंद बिखे। सोग कब हसनो कब रोइये कब मुँह मैल परे अभिमानी। कब साधु संग तोइये कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नाही अलोइये। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है।

बोल करत निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हौ मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरी बहुत इयान उपजत निर्गुण करूप कुल हीन नानक हौ।

पूरे मनोरथ साध संग तद लभू देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद परम धार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता

देवनारी मन सगल स्यानक रही, कर्म कराम हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ। आप नेक पै शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप खापन हारे कुदरत की मना कही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद काहूं जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे हैं राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पर।

अज्ञान अंधेरा संसी काटिया, जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जल के शीतल होनी। तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छार सियानक संजम नानक, लागो गुर की चरणी। देव गंदारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना कह आहा, तिना प्राप्त एव निधाना, जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम विसाहा। देवनारी महला पंजवा, मन कह अंकार अपारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेर अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रह नाम आधार जी जय नाम को अंग सूख कने रह छके दूजा देव गंधारी महला पंजवा। मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फांदो पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो बलिहार नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो देव गंधारी महला पंजवा माई जो

देवदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गंदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंदारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे।

कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल विसारे। देवगंधारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारो। प्रभ गुण गाए बिखे बन करया

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करे ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

कहते थारो हो करत तराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जा का अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग न

মা পিতা পাই সুত বন্ধত আর কোন গ্রহ কি না রহাও তন তে প্রাণ হোত জব নিহারে তের কো প্রেত পুকার আজ ধরি কো নে রাখে করতে দেখ নিকার মৃগ কৃষ্ণা জো জগ রচনা যে দেখো হৃদয় বিচার কহু নানক পজ রাম নাম নিত যাতে হোত উদার দেব গন্ধারী মহিলা নামা जगत में चूटी देखी प्रीत अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो समय कैक है हिस्सों बांधो चीत अंत काल संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख वह हारो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभु के गीत ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल अमृत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे महला पन्नी।

जन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहीं चित लायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरमुख नाम अमोले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रब आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कम

अमृत गुरमत पाए राम। हो मैं माया दिखे मेरी जिंदड़ी हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम से आए राम। हर काज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन बेदिया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुख खीरे राम। हर दिन शांत ना

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी करवाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाले राम ज्यों पंखी कप

गुर सतगुर वीख लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम कवि।

राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़िए तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़िए गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़िए हर मिलिया सुख सब जाए राम तुर मस्तक हर सब लिखिया मेरी जिंदड़िए जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़िए पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिक औजल कारण हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम, नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए, सब दुख निवारण हारो राम, सारसना

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम।

तर जो हो संत इकत्र होए मेरे लाल जियो अविनाशी पुरख पूजे हाराम बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो ए मन तन सब अर्पे हाराम मन तन तन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजे हा दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर।

हर नाम जपत सो हंस प्राणी ताकी महिमा कित गना हर विसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊंच अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किछ प्रभु मिले अति प्यारे।

पतित उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पतित उदाहरण शरण स्वामी कृपा निज दयाला। अंग कूप ते उदर करके सगल कट प्रति।

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नान।

साधु संग में हर गुण गाय राम। गुण गाय गोविंद सदा नीचे, कल्याण में प्रगट भए, सुजा सुहावी।

महामोहन जिन नाम हर के सुख नहीं सहस सियानक उपाव साके जह पावत कह जाहि आद अंते मद पूरन सर्वत्र कट कट आहि बिनवंश नानक जिन साध संगम से पत से